मन प्रीत कार जी एक हजार रुपए आदर कर दे, दीर्घ आयु दे, अरोगता बख्शनी। परमिंदर सिंह ते गुर अर्श प्रीत कार जी व्याह दे कार निर्विघ्नता सात राज होण लई बेनती।

देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी लय पहर जा संगलाई पांचो आर जा सुरमा नंद पास कर आए।

नारायण कछ मछ तिंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जय ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब धीन जारी लिखी के नाम के महंत लहियत है। माधव भंवर ओ अटेर को कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है। मूड रूड पीट तन्ना गूढ़ता गोभेद पावे पूज तन्ना ताहे जाके राखे रहियत है। विश्वपाल जगतकाल दीन दयाल परिसाल सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है। जोगी जंडा थारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान का

नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव करे वही करत है। चंद्रमात शीतल न सूर से तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्म से न वेद चालीसा नत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल मास के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा विष्णु के वेद और पुराण के सिमृत समूहन के होए होए बिताए है। मोहन दी मदार के ते अश्विनी कुमार के ते अंसा अवतार के ते काल बस भय है। वीर और पिकांबर के ते गण न परत ते भूमि ही ते के फिर भूमि ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोस लो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के तरफ को दलत है। मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर द्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूम आद भूम में बिलत है। सिज दे करे अनेक धूप जी कपट भेष भोजती अनेक दानि बावत है। शीस को कह भयो मल्ल जो पिकाढ़त अनेक दंड सोतन डंडौत अस डांग अथ तीस को कह भयो रुग जो पेडार्य रहियो उर्ध मुख मन तेरा मुंड ने होरायो आदीस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीन एक भावना भीन कैसे पावे जगदीस को। शीस पट कत जाके कान में खजूरा धसे मुंड चट कत मित्र पुत्र हूँ के शोक सौ आख को चरैया फल फूल को फचैया सादा बान को ब्रमैया और दूसरो न भूक सौ कहा भयो भेड़ जो घसत शीस बृछन सो माटी को मछैया बोल पूछ लीजे जोक सौ कामना धीर काम क्रोध में प्रवीण एक भावना भीन कैसे भेटे पर लोक सौ। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करोई करत है। एक पाए ठंड सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पां भूम श्रावक धरत है। वाहन अनेक जुग एक ठोर बास करे काग और चीर देश देश बिचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में न हुजलीन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है। जैसे एक सांगी कहूँ जोगी या बैरागी बने गब हूँ संन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पर लगावे बारी कहूँ दंडधारी हो के लोग न भ्रमावई कामना दीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पांच बार गीदर पुकार पर शीत काल कुंजर गद अनेक दा पुकार ही कहा भयो जो पे कल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोरटा गुठार सो मार ही कहा भयो फांसी डार बुढ़ जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना भी निकस ज्ञान को विचार ही। ताप के सहत जो पे पाइये अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए तो जो पे पाय जाप देव भूतना सदेव तुही उचरत है। नभ के उड़े तो जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल बो करत है। आग में जरत गत राण की परत कर पताल के बासी क्यों भुजंग न तरत है। कहु भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान बो हिंदू तुरक को रावसी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान बो करता करीम सोई रास कर रहीम ओई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही के सेव सब ही को गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहु राम सीत सोई पूजा निवाज ओई मान सब एक बयाने को प्रभाव है। देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के वेश को प्रभाव है। एक नैन एक कान एक देह एक बान खाक बाद आतस ओ आव को रलाव है। अल्लाह अभेक सोई पुराण ओ कुरान हुई एक सी स्वरूप सब एक ही।

आग दे कनों का गोड आग उठे न्यारे न्यारे हो गए फिर आग ही मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनों का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नाते ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते गाछ माछ केते उनको करत भज केते अच वच होए सपाच उड़ जाएंगे। केते नब बीज अच पाच को करेंगे भज केतक प्रताच होए बचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज जीव तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुकत फिरत कित रोत मरत कित जल में डुबत कित आग में जलत है। केत गंग वासी केत मदीना मका निवासी केतक उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत केत भूम में गणत केत सुआ पे चढ़त केत दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बट बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी। घास हारे चंदन लगाए हारे चुआचार भुज हारे बाहन चढ़ाए हारे लापसी। गा हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटली बहारे भीतन लगाए हारे छापसी। गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित तपन।

धामं न पुत्रं न मित्रं न सत्रं न भामं अलेखं अवेखं अजोनि स्वरूपं सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध रूपं।

न लोभं न चोभंग भूतं भेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदैवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जोनीय क्षयाद्वयाजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं भयनिर्विखादं अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदैवं सदा सिद्ध बिरदं स्वरूपे नमो।

कहूँ देह दुखं कहूँ औखदि रोग के सुख सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जच गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सात की तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूमि के भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जज विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज

विद्यांगहुं काब रूपंगहुं चेष्टाचार चित्रंग स्वरूपंगहुं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध सिखंग कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देश भाख्या कहूं देव वाणी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारं कहूं जंत्र रीतं कहूं शस्त्र धारं कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेच्छ व्याख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नाग बाणी कहूं गारुड गूढ़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूं वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूं छल छाला धरे छत्र धारी कहूं राज साजन

आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कलब जोग साधत दुरंत तन सीत खाम बरखा सहंत कई कलब एक आसन वितंत कई जत

कई सिमृत शास्त्र दुचरंत वेद कई गोग काव कथत कतेब कई अगन होत्र कई पवन हार कई करत कूट मृत को हार कई करत साग पै पत्र भच्छ नहीं तदब देव हो वत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग आदि गरम कहूँ अग्न होत्र कहूँ तीरथ धर्म कई देश देश भाखा रटंत कई देश देश विद्या बढ़ंत कई करत भांत भंत न विचार नहीं नायक तास पायत न पार कई तीरथ तीरथ भर मत्सो भरम कई अग्न होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदव दास पायत न पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धरम कई सिमृत शास्त्र तुचरत सो करम न्यौली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जक्ष गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उच्चार कई भजन।

भेवनाथ है, समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदीव सर्व साथ है। अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा। अनूप रूप स्वरूप है, अछिज तेज मानिए सदीव सिद्ध शुद्ध दा, प्रताप पत्र जानिए। न राग रंग रूप है, न रोग राग रेख है, अदोग दाग दग है, अभूत ब्रह्म भेक है। न तात मात जात है, न पाद चिहन वर्ण है, अदेग सेघ भेक है, सदीव विश्व वर्ण है। विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेग विश्व वर्ण है, जिमी जमान के विखे सदीव करम भरम है। अदवेख है, अभेग है, अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्व ठौर में विशेख आन मानिए। दंजंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई, पुराण और कुरान नेत नेत के बतावई। न करम में न धर्म में न भरम में बताइए, अगंज आदि देव है कहो सु कैसे पाइये। जिमी जमान के विखे समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है। न हान है न बान है, समान रूप जानिए, मकीन और मकान अप्रमाण तेज मानिए। न देह है न गे है, न जात है न बात है, न मंत्र है न मित्र है, न तात है न मात है। न अंग है न रंग है, न संग है न साथ है, न दोख है न दाग है, न द्वैख है न देह है। न सिंह है न स्यार है, न राव है न रंग है, न मान है न मौत है, न साक है न संग है। न जज है न गंधर्व है, न नर है न नार है, न चोर है न साहु है, न साह को कुमार है। न ने है न गे है, न देह को बनाओ है, न चल है न छिद्र है, न चल को मिलाओ है। न जंत्र है न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है न रंग है, न रेख है न रूप है। न जंत्र है न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न छल है न छिद्र है, न छाया को मिलाओ है। न राग है न रंग है, न रूप है न रेख है, न कर्म है न धर्म है, अजन्म है अभेक है। न तात है न मात है, अख्याल खंड रूप है, अछेद है अभेद है, न रंग है न भूप है। परे है पवित्र है, पुनीत है पुराण है, अगंज है अभंज है, करीम है कुरान है। अकाल है अपाल है, ख्याल है अखंड है, न रोग है न शोक है, न भेद है न भंड है। न अंग है न रंग है, न संग है न साध है, प्रिया है पवित्र है, पुनीत है प्रमात है। न सीत है न सोच है, न ग्राम है न घाम है, न लोभ है न मोह है, न क्रोध है न काम है। न देव है न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है। न काम है न क्रोध है, न लोभ है न मोह है, न द्वैख है न भेख है, न दुई है न द्रोह है। न काल है न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है अभंज है, अभरम है अभूत है। अछेद छेद है सदा, गंज गंज गंज है, अभूत अभेक है, बली अरूप राग रंग है। न द्वैख है न भेख है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है न पात है, न चित्र चिन्ह वर्ण है। बेअंत है अनंत है, अनंत तेज जानिए, अभूम अभिज है सदा, अछिज तेज मानिए। न आद है न व्याद है, अगाद रूप लेखिए, दोख है अदाग है, अच्छे प्रताप देखिए। न कर्म है न भरम है, न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है न तंत्र है, न मंत्र को रलाव है। न छल है न छिद्र है, न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है अनंग है, अगंज से विभूत है। न काम है न क्रोध है, न लोभ मोहकार है, न आद है न गाद है, न व्याद को विचार है। न रंग राग रूप है, न रूप रेख रार है, न हाव है न भाव है, न दाव को प्रकार है। गजाधपि न राधपि करंत सेव है, सिदस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा। अगस्त आद जे बढ़े तपस्तपि विशेखिये, बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिये। अगाध आद देव की अनाद पात मानिए, न जात पात मंत्र मित्र शत्रु स्नेह जानिए। सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रह, तुरंत द्रोह देह के अनंत।

चक्र चिहरना वर्ण जाको जात पात न भेक रूप रेख न रंग जाको राग रूप न रंग सर्व लायक सर्व घायक सर्व ते अनभंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंध दयाल स्वामी आदि देवपाल दीन बंध प्रवीण श्रीवत सर्व को करतार वर्ण चिहरना चक्र जा

देव देव गंधर्व किन्नर मछ कछ अपार भूम का जले थले मेहमानी जय नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद मित्र पालक शत्रु।

आय गाय थके सब गुण चक्र तफे मुख चार आद अंत नाम अध जा को भूत भव भवान सत दुआ पर तृतीय कल जुग जत्र काल प्रधान। ध्याय ध्याय थके महामन गाय गंधर्व पार हार हार थके सबे नहीं पाइये तह पार नारद आदक वेद व्यासक मोन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पचर पार सोद सोद थके महासुर पायो नह पार त्व प्रसाद दोहरा। एक समय श्री आत्मा उचर्यो मत्स्यो बैन सब प्रताप जगदीश को कहो सकल विद तैन दोहरा को आत्मा स्वरूप है कहाँ श्रेष्ठ को विचार कौन धर्म को कर्म है।

लंडन असुर भंडन दुष्ट निकंदन आदि वृत्ते चरासुर मारण पति दुधारण नरक निवारण गूढ़ गति अछे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय हो सी मैखा सुर मार्दन रमक बर्दन छत्र छिते आसुरी विहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप अते चंडासुर चंडन मुंड विहंडन धूम्र बिंदु।

डावरू डवंगे बुभर बवंगे भुजा फरंगे तेज बरंग लंगुड़िया फांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायुध चमके भूखण दमके अत सिद्ध झमके फुंक फनंग जय जय होसी मैं खासुर मर्दन रमक बर्दन दैत जिनंग चंडा सुर चंडन मुंड बिमुंडन खांडे अखंडन खून खिते दामनी दमंगण धुजा फरंकण फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विवरखण दुष्ट प्रकर खंड पुष्ट प्रहर खण दुष्ट मथि जय जय होसी मैं खासुर मर्दन भूमा कासल ऊर्ध अधि दामनी प्रहासन सुषम निवासन सृष्ट प्रकाशन गूढ़।

खासन मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघोक निवारण दोष प्रचारण श्रेष्ठ उपारण शुद्ध मते फणियर फुंकारण बाघ पकारण सत्सहारण साध मते सहते सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय हो से मै खासुर मर्दन भूमाकाश पताल जलंग चाचर चमकारण चिच्छुरहारण धूम धुंकारण द्राप मथे दाढ़ विवृतंते जोग जयंते मरुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय हो से मै खासुर मर्दन भरम विनाशन धरम धुजे घुंगुरु घमंकण सहस्र झमंकण फणियर फुंकारण धरम धुजे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गति केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमथाहे एक वृत्ति जय जय हो से मखासुर मर्दन आदि कुमार अगाध वृत्ति सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन वृथ मथे कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आदि कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण वितल तले जय जय हो से सब ठौर निवासन बाय पताल आकाशन ले संकटी निवारण अधम उधारण तेज प्रकर खण तुंद तवे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय हो सी शास्त्र प्रकर खण आद अनिल अगाध अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमंके के हरलंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय हो सी रक्ता सुर खंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज बिलोचन वृतन विमोचन सोच बिसोचन कौच कसे दामनी प्रहासे सुख सरणासे सुब्र सुवा

कंट का बिराजे रुण झुण बाजे ब्रह्म बाजे सुन सुरंग कोकिल सुन लाजे किल बिख बाजे सुखो बराजे मध उरंग दुर्जन दल दज्जे मंत्र रिज्जे सब न भज्जे रूह रणंग जय जय हो सीमा खासुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोष रोधन क्रूर विदे धूमराज विदुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विदुंसन शुद्ध मते जाल वाजयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हो सीमा खासुर मर्दन आद जुगाद अगाध गति खत्रियाण खतंगी अभय अभंगी आद अनंगी अगाध गते वृडलाज बिहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृत्ति सुर नर प्रतिपारण पति दो धारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय हो सी मै खासुर मर्दन विश्व विध्वंसन सृष्ट करे दामनी प्रकाशे उन्तरना से ज्योत प्रकाशे अतुल बले दान वे प्रकरखण सर्वर वरखण दुष्ट प्रदरखण वितल तले अष्टायद बाहन बोल निबाहन संत बनाहन गूढ़ गति जय जय हो सी मै खासुर मर्दन आद अनाद अगाध वृते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्नाहे दुष्ट प्रताहे अर्दल गाहे दुख हरे गंजन कुमाने अतुल रवाने संत जमा

दयाल दाता तुरंत दुख दोख रहत जेह नेत नेत सब वेद कहत। कई उच नीच की नो बनाओ सब वार बार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरज सिवंत कई पलट सूरज सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वय के लखाए। अंछिज तेज अन भय प्रकाश दाता दुरंत अद्वय ना सब रोग शोक ते रहत रूप अन भय काल अच्छा स्वरूप। करुणा निधान कामल कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अन भंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अविचल पार। जानी न जाय जय रूप रेख कहे बास तास कहे कौन भेख कहे नाम तास है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चैन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव।

परम सन्मान योग जुगा हो जुग अटल चवर शतर तख्त दे मालिक हलत पलत के रख्यक वालिये दो जहान शब्द अवतार शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज जिना सतगुरु सचे पातशाह जी महाराजियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर साहेबां दे पावन अस्थान तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहब जी विखे जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ तखत साहब जी दी नित मर्यादा नितनेम अनुसार दिन दे चौथे पहर दे दीवान सज रहे हन। ਹੁਣ ਸੱਜ ਰਹੇ

0: लेकिन ओ बांदर जेड़ा जिन्हों आपां ने जिथों ना ढाल कढ़ाउणी है ओ बांदर नहीं आया। देखो सतगुरु महाराज की है कौतक करके, सतगुरु महाराज जी कहण लगे कोई नहीं सिंगा भाई तू फिकर ना कर,
1: त्रास के तुपक प्रहार।
0: ते उन्हें क्या नहीं महाराज लगदा ओ बांदर जेड़ा नहीं आउण वाला है, इस करके मैनू फिर तो आग्या दित्ती जावे, मैं बंदूक चला करके ओनू मार दवांगा, जदो मर गया ढाल मेरी आ जावेगी।
1: बहुर ताहे कर ले हाँ ढाल,
0: फिर बाज करके सतगुरु महाराज मैं अपनी

0: मैं ब्रह्मचारी दे घर दे विच बार बार कोई एक चीज बोलो वो बंदा उन्हूं नोटिस करदा उहदा मतलब ऐसी उन्हें उहदी निगाह दे विच ऐसी के ग्रस्ती जिहड़े हन उन्हें ग्रस्तियां दी प्यारियो उन्हां दी हेठ करनी कीती भाव के एक नफरत दे नाल किया ग्रस्तियां दे घरां विचों नहीं महाराज ग्रस्ती जड़े हन उन्हां दे घर दे विच तां झूठ बड़ी वरतदी है मैं ब्रह्मचारी दे घर दे विचों ब्रह्मचारी दे घर दे विचों पानी लैके आया हां
1: देर दीन तुरन धरो
0: ते जदों बार बार कहिंदा ना भाव के उन्हें ग्रस्त जीवन दी ग्रस्त धर्म दी निरादरी कीती ते नाल ब्रह्मचर्या दा जेड़ा ना उन्हें जेड़े व्याह नहीं करदे हन ब्रह्मचारी दा प्यारियो दी डेफिनेशन परिभाषा बहुत वखरी है ओ परम अवस्था है ब्रह्मचर्या अवस्था लेकिन प्यारियो कई बंदे जड़े ना ओ व्याह नहीं कराउंदे हन अपां वेखदे आ किसे कारण करके कहिंदे जी असी व्याह नहीं करना ठीक है व्याह तो ता रोक जांदे लेकिन प्यारियो जदों उहनां दा जीवन अपां वेखदे आ पता लगदा कि ता जी बहुत गंदा बंदा बड़ा बेईमान बंदा सिर्फ इन्हें व्याह नहीं कराउणा कीता लोक लाज करके लोक दिखावा करके अंदर खाते सारे पुठे सीधे काम करी जांदा पता हुंदा प्यारियो समाज दे विच रहिंदियां विचरदियां पता लगदा फिर आपां वी कहिंदियां कादा ब्रह्मचारी भाई तू कादा तू कहिंदा जी अनमैरिड हां व्याह नहीं कीता उहदे नालों तां ग्रस्ती बंदा वधिया है जिन्हें व्याह कीता एका नारी जती होए एक नारी दे नाल अपने संबंध रखदा लेकिन एहो जे बेईमान बंदे प्यारियो ओ व्याह शादी ता नहीं कराउंदे लेकिन दूजे पासे जा करके खे खाई जांदे हन फिर ओहदे नालों ता बंदा ना महाराज ने कहा ना इस गिरही थां वहो ते एहदे नालों ता प्यारियो एहदे नालों ता ग्रस्ती जिहड़ा ओ भला है जिथों को वरसाए ते ग्रस्ती दे घरों प्यारियो कोई ना कोई बंदा कोई भी जावे खाली नहीं मुड़दा उहने कोई ना कोई तुहानू छकाउणा है सो इन्हे जदों बार बार गया महाराज ब्रह्मचारी दे घर दे विच जिन्हें व्याह नहीं कीता ओहदे घर दे विचों लैके आया महाराज जी ने पानी गेड़ दिता
1: दया सिंध बोले जल डार
0: ते दया सिंध धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी पानी सुट करके कहण लगे
1: ग्रह को शुद्ध न
0: सतगुरु महाराज ने कहा कि भाई जेड़ा व्याह नहीं करता ना जेड़ा इस तरह अखौती ब्रह्मचारी है यह अखौती ब्रह्मचारी प्यारियो होना बहुत कठिन है हुण इही ग्रंथ दे विच आया कि ब्रह्मचर्या प्यारियो अठ अंग उहदे हुंदे हन अठ तरह का ब्रह्मचर्या हुंदा है जिहड़ा इहनूं इहदा पालन करदा ना उह असली प्यारियो ब्रह्मचारी है यह याद रखना चाहीदा सिर्फ कि आपां वी कई वारी कईआं नूं कह दिंदे आ जी इहने व्याह नहीं कीता जी ब्रह्मचारी है नहीं प्यारियो ते ब्रह्मचारी का मतलब एदा अर्थ होंदा ब्रह्मचर्या जेदी चरिया जेड़ी है ब्रह्म वांगू बन जांदी है ब्रह्म का मतलब परमात्मा जेदी चरिया दिन चरिया जेदा जीवन परमात्मा वत हो जांदा ओ असली ब्रह्मचारी है ना के जेने व्याह नहीं कराया ते ओ ब्रह्मचारी नहीं बन जांदा हो उहनूं आपां कह सकदे अनव्याहता बोलो अनमैरिड बोलो अंग्रेजी दे विच इहो जे बंदे जिहड़े उहनां नूं अनमैरिड किया जांदा जी इहने व्याह नहीं करना कीता लेकिन ब्रह्मचारिया बहुत वड्डी अवस्था है प्यारियो ग्रस्ती बंदे जिहड़े ब्रह्म दे नाल जिहड़े जिहनूं आपां ब्रह्म ग्यानी बोलदे आ ते समझ लिओ ओही अवस्था दे मालक हुंदे हन ब्रह्मचरिया जिन्हां दी हुंदी है सतगुरु महाराज जी ने यह वचन सुन करके कह दिता कि नहीं भाई उस बंदे दे घर दा पानी जेड़ा ठीक नहीं है झूठा है गंदा है
1: एकल कहां सोचता धरनी
0: ते जेड़ा बंदा कल्ला रह गया उन्हें कादी सुचमताई रखनी है
1: रहते बाल तहां सुध
0: ते जेथे ना ग्रस्त जीवन रहिंदा जेथे ग्रस्ती रहिंदे हन जेथे कई लोग आए गए ते पूरा जेथे ग्रस्त जीवन वाला महाराज जी ने प्यारियो ए बहुत ए जो अध्याय जेड़ा ना ए प्रसंग जेड़ा प्यारियो बहुत रहस्यमयी है सतगुरु महाराज जी ने प्यारियो ग्रस्त जीवन दी प्रधानता दसनी कीती है महाराज ने वचन कीता जैस परिवारां दे विच बहुत सारे बच्चे रहिंदे हन ते बहुत सारे जी जंत रहिंदे हन फिर उथे रह करके उथे जदों सुचमताई का पालन करते पानी जरा

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਲੇ ਰਾਜਾ ਆਸਾ ਸਲੋਕ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਪੁਰ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਸੋਪੁਰ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਹਰ ਅਗਨਮਾਨ ਜਗਮ ਅਪਾਰ ਅਗਮਾ ਸਭ ਪਿਆਰ ਰਹੇ ਸਭ ਸਿਆ ਭਲ ਤੁਜਾ ਜੀ ਹਰ ਸਿਆ ਸਚੇ ਸਦੀ ਦਿਨ ਹਰ ਸਚੇ ਸਰਬ ਦਿਨ
1: ਸਰਵ ਪਰ ਪਰ सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरन काल का त्रास नवरिय। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री असधुज जूं करी यह रच्छा। राख लिहो मुहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा पप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रगासा, सकल काल का किया तमासा। जवन काल जोगी सब कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तसही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सिवकण को सिव गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह पद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। छींटी ते कुंचर यस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने, जा बुद करख करा कर तारा, प्रजा धर तब देह अपारा, जब आ करख करत हूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे, आप आपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम, निरंकार निर्भकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत वेदा, ताको कर पाहन अनमानत, महा मूड कश भेद ना जानत, महादेव कौ कहत सदास, नरंकार का छीनत नह भिव, आप आपनी बुद है जेती, बरंत भिन्न भिन्न तोहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जेरज से तज कीनी, उत्भुज खान बहर रच दीनी, काहूं फूल राजा है बैठा, काहूं समट भयो संकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत तपाता, सकल मलेच्छ करो रणघाता, जे अस दुजतव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे, पुरख जवन पग परे तहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार धिए हैं, ताकि काल निकट नह हैं, रक्षा होए ताही सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्टन जाए निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो, रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई, दुष्ट छा छै सकै न कोई, एक बार जिंत मैं संभारा, काल फांस ते ताही उबारा, जिन्नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख तेरा, खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ द लेहु उबारी, सर्व ठौर मोह हो सुहाई, दुष्ट दोख ते लेहु बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुवराता, किलबिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता, श्री अल्दुजा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बाशत फल पावे सोई, दुख नाथ सह व्यापत कोई, अडल सुनै गुंग जो याहे, सोरस ना पावई, सुनै

कह चौपई सम सतरै सैस भणी जय अर्ध सैस फुन तीन कह जय भादव सदी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पखयाने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संबादे चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त अफजू वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा दास जान कर दास पर की जय कृपा अपार आप हाथ दै राख मोहे मन क्रम बचन बिचार चौपई मन अग्नि सह प्रथम मनाऊं किशन बिशन कब हूँ नह ध्याऊं कान सुने पहचान नतन सो लिव लागी मोरी पग इनसो महाकाल रखवार हमारो महालो मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार बाह गहे की लाज विचार अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सत्र हमारे मरिय देग तेग जग मैं दौ चले राख आप मुह और ना दले तुम मम करो सदा प्रत पारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान आप ना मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रतपारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दास जान दे हाथ उबारू हमरे

जय जय सुरलोक वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवैया छतरी को पूत हां बामन को नह कैतप आवत है जू करो अर और जंजार जितो ग्रह को तोह त्याग कहाँ चित ताम धरो अब रीज के देहो वह हम को जहां बिनती कर जोर करो जब आओ कि औद निदान बने अत हीरन मैं तब जूझ मरो दोहरा दसम कथा भागवत की भाखा करी बनाए अवर बासना नाहे प्रभ धर्म जद के चा

कान के अंतर की जान तपले बुरे की, अंदर का जो भाव है वो गुरु साहब जान देने। किन्हें एक दिन फिर सच्चे पातशाह ने बाज मार के बुला लिया, किन्हें भाई रोज आने मन का भाव मन में लैके ही चले जाते। किन्हें सतगुरु कहण की हिम्मत नहीं पैंदी। गरीब नवाज सच्चे पातशाह दे अगे हाथ जोड़े हुए है, चरण फड़ के कहिंदे सच्चे पातशाह एक कृपा कर दे। गरीब नवाज महाराज एक मेहर वरता दिओ कि

कमल हर पूर्व से आतरा तरा जल कह रहा जात में जो जो तुम जाता कल करा पर पुरया तू सचा सारे जिनकी

पौड़ी पड़िया होवे गुनेगार तो मैं साधना मारिए जे अकाली करना ते ना पुचारिए ऐसी कलाना खेडिए जिधर के गारिए पड़िया ते हो मैं आप चार के बिचारिए मोह चले सो अगे मारिए मोह चले सो अगे मार।

पावड़ी सतगुरु टोवारिया जित मिले किसम समा लिया जिन कर उपदेश ज्ञान दिया ने नेत्र जगत निहालिया कसम छोड़ दूजे लगे डूबे सिमण जारिया सतगुरु भवता।